पावे। शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु करदर गिनी बिय तिरिसंगत सतुन्गें सितुवन सियलु उपद्रव दुरिं तुरु वेवा।